गुर पै संग प्रभ दिखाया, खिन माए सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रैन रलिया करे कामन, मिटे सगल अंदेसा, बिरवंत नानक कंत मिलिया।

मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली, मान्यता एक वाल एक ठाकुर जिने सब काल तारिया, तुझ वचन गुर के वास किया।

से सब फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज नेचल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सफल तू सफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब।

सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साध ना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे। जल तोवे बोधे अनीत, सौद कहा होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक ना उधरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पो ब्याप, अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै। पेख अनेक अगन नहीं बुझे।

अंतर मल माया शब्द नाहे कछ करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर ब्यापै लोभ सवान अंतर अगन बाहर तन स्वाह।

जय प्रसाद तेरी पात रहा, गुर प्रसाद नानक जस कहा, जय प्रसाद सुने कर्ण नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हस्त कर चला, जय प्रसाद संपूर्ण फला, जय प्रसाद परम गत पावै, जय प्रसाद सुख सहज समावै, ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद

तुदे आपे सठ सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सा का जानोई। आसा महला चौथा, तुम करता सचियार मैडा साई। जो तो भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनू कृपा करे तिन राम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ

च करम शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण हो हे चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम गावो। आप हाथ दे मोहे बचाबो सुखी बसै मोरो परवारा।

सब लोग सवारा नमस्कार है तहे हमारा। जबन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी। सेवगन सुख दियो सत्रण गो बल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की वीर पिछानत। चीटी ते कुंचरिया स्थूला सपर कृपा दुष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पिछन्न घट घट के बट बट की जन। जबद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब हीते रहत निरालम जान।

देव कहु कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुदहै जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती, तुमरा लखा ना जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सुरूपा

कैठा कहूं सिमट पयो संक्री कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संग रो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।

राज आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दा जान कर कृपा कर मोहे, हार परामयान द्वार तोहे, अपना जान करो व्रत पारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा, दा जान दा हाथ उबारो, हमरे सब ऐरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहुर करो कविता विदनाना, किशन जथा मत चरतर उचारो, चू कोई कबले हो सुधारो कभी बाज दोहरा, जो निज ब्रह्मो सो कहा, सो कहे हो जग माहे, जो ते प्रभु को त्याए हैं, अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा, हर हर जन द्वी एक है, बिबिचार गछ नाहे, जल से उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखे समाहे दोहरा, जब आए स प्रभु को पयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेपते, सब हूँ कहत सुनाए कब बाज दोहरा, ठाट पयो मैं जोर कर, भजन कहाँ सिर न्याय, पंथ चला तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान कहो, नितुड़ते आए हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत दोहरा, कालपुरख की देह मो, कोटक विष्ण महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते, राव सस क्रूर जलेश दोहरा, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, सुर्ग बास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौपाई, जो एक कथा सुने अर गावै, दुख पाप तह निकट न आवै, मिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद शब सके न कोई, सम्मत सत्रह सहस पचावन, हड बदी प्रथम सुखदावन, त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल भरी लो लियो सुधारा दोहरा, नेत्र तुमके चरण तर, सदर्व तीर्थ रंग, श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा, साध असाध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ

थाल विष्टिन वस्तु पयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो।

इतनी सेवा प्रवान कर लीजिए, कीर्तन कर दिया, पुला दी माफी बख्शने पैसे पाए। गुरजंट सिंह जी पटियाले वाले आप जी ने कथा राही जोड़ने उन्होंने पास को प्यार से सरण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जोड़ के देखिए तां जेड़ा एक्सपीरियंस शब्द है ना, ये भी साड़ी हमें ही है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ज्यों ज्यों बंदा बड़ा हुंदा है त्यों त्यों अनेकां चीजां सीखदा है। एक तो एक एक्सपीरियंस हुंदा है उन्हों, त्यों पकदा जांदा है।

सिंध की लैन उल्ट आप आपे भई पलट कह को बैन कहंदे लून दी डली समुंदर दी था लैन गई घुल के समुंदर दा ही रूप हो गई आके उन्हां डलिया नूं की दस दी जेड़े जेड़े वाहिगुरु दे मार्ग ते चले वह वाहिगुरु दा ही रूप हो गए वह आके जीवां नूं की दसन के वाहिगुरु किदां दा है आखो सतनाम ताही उन्हां ने फिर इक्को ही गल कही है कहंदे कहो कबीर गुंगा गुड़ खाया पुछे ते क्या कही है गुंगा गुड़ खा भी लवे ते कह भी दवे मिठा या फिर गुंगा ना होया कहंदे ता गुंगे दी मठियाई है भाई ये उल्ट के परतन वाला है ही नहीं कोई जिवें कहंदे पतंगिया दे विचों किस बैठे सी किसे पतंगे ने कहा अज किते लाट नहीं बलदी कहंदे एक पतंगा कहंदा मैं देख के आना ते वो देखन चला गया वो डीक दे रहे मुड़िया ही नहीं पतंगे कहंदे लगदा धोखा कर गया वापस आके दस्या ही नहीं जेड़ा जेड़े दूसरे पतंगे सियाने सी वो कहंदे धोखा नहीं कर गया वो पतंगा सी जदों अग मिली ते उत्ते वो लाट ते डिग के सड़ गया उहदा ना आउणा ही दसदा कि अगे अग बलदी है आखो सतनाम श्री वाहिगुरु कहंदे जेड़े मिल जांदे आ वाहिगुरु च मुड़ के परतदे नहीं जदों कबीर वाहिगुरु च मिले कबीर नहीं परते मुड़ के जदों रविदास जी मिले रविदास जी नहीं परते ते

कि महाराज पूरा गुरु कदों मिलता है। महाराज जी कहते जो वाहेगुरु नजर करते हैं आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कृपा करते हैं उदों मिलता भाई। हुण

भगत पीर साहब का शब्द है। कल भी आप पढ़िया सी तो संगत वालों फिर हुक्म है कि वह शब्द दोबारा फिर एक बार सुनाया जाए। आप बड़े प्यार दे नाल

भक्त कबीर साहब बहुत ही गहरा सोचने वाले संत, जिन्हों की बाणी मैं कल भी बेनती की सी, जिंदगी की बहुपक्षी बाणी है। हर ढंग के नाल उन्होंने जीव को समझाया है। हुण यह साढ़े ते डिपेंड करता कि असी किन्ना क समझते हैं, साडा पात्र किन्ना है, साडा भांडा किन्ना। उन्हां वल्लों दस दिता गया है कि संसार जिहड़ा ये भय विच डर विच है, सहम दे विच है, तो बाहरों जिन्हें भी साधन बनाए गए हैं ये डर तो भय तो बचन वास्ते हैं। सब तो वड्डा जो सहम है आदमी दे मन दे विच, सब तो वड्डा सहम वो मरन दा है। कबीर साहब कहिंदे ने मरत ना सोग बेयोगी, रहाओ दी पंक्ति है। इस डर तो बचन वास्ते आदमी ने धर्म दा भी सहारा लिया है, धर्म दी भी आड़ दे विच के मौत ना आवे, मैं मरा ना, जे मरा ते अगले जन्म दे विच फिर मैनू कुछ मिले तो अगले जन्म दी भी लालसा नाल जुड़ी है। कई बार आदमी कहिंदा मैनू इस जन्म से चलो सुख नहीं मिलिया, तो कोई गल नहीं, अगले जन्म ते मिल जाए, तो अगली आस भी आदमी ला के कई बार धर्म नू अपनाउंदा है। पर कबीर साहब कहिंदे ने तन दे लैवल दे उत्ते, शरीर दे लैवल दे उत्ते जिन्ने भी आवरण किए जान, जिन्ने भी कर्म किए जान, उसनू कर्म कांड ही किया जाता है। वो कर्म कांड शरीर दे नाल संबंधित हैं, शरीर दे खत्म हुंदिया वो कर्म कांड भी खत्म हो जाते हैं। भावें वह सिवरन कर रहा है, भावें वह पूजा कर रहा है, भावें वह दान कर रहा, भावें पुन कर रहा, अगर उहदे विच मन उहदी आत्मा पूरे तौर पर शामिल नहीं होंगी, क्योंकि साधना मन की है, शरीर की साधना नहीं। इस करके आदमी ने मन की मैल नूं धोण वास्ते बाहर शरीर नूं धोना शुरू किया। यह जिन्हें भी संसार तीर्थ बने ने, तीर्थ अस्थान बने ने, इस करके बने ने कि मेरा मन जिहड़ा है निर्मल हो जाए, मैं पापी ना रहां। पर गुरु कहिंदे ने नामन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर, जिहड़ी तन की मैल ना मनते जात। शरीर नूं धोण दे नाल मन निर्मल नहीं हुंदा, शरीर नूं मुंदरां पा लैण दे नाल, शरीर नूं खिंथा पवा देण दे नाल, शरीर दे उत्ते भस्म मल लैण दे नाल मन की मुक्ति नहीं जे हुंदी, मन मौत कोलों नहीं जे डरनों हटदा। इहदे विच कबीर साहब कहिंदे जदों हुण गुरु ने मैनूं समझाया है ना कि मुंदा किहड़ियां पाणियां, इस माया तो बचना कितना, पंक्तियां सारियां विच आउंदियां ने, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, त्रिपल कहिंदे ने तीन गुणा नूं, रजो गुण तमो गुण सतो गुण। इस दे विच जिहड़ी माया मन नूं प्रभावित करदी है, कबीर कहिंदे ने मैं उस माया का असर खत्म किया है मन कर। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, मैं इहदा असर जिहड़ा रजो गुण तमो गुण रज गुण तम गुण सतगुण, ये तेरी है माया, बाणी की पंक्ति है। इह तो मैं हुण निर्लेप हो गया ते कल्प विवर्जित पंथा कर दिता है, जिहड़ियां कल्पनावां दी जीवन च मैं जिउंदा सां वो कल्पना नूं मैं विवर्जित, मैंने वर्जित, मैंने रोक दिता है। वर्जित मैंने रोक, जिहड़ी चीज़ मनाई, जिस चीज़ की मनाई हो गई उसनों विवर्जित कहते हैं। ते मेरा हुण ये पंथ बन गया है गुरु दे उत्ते दर दे उत्ते चलना, ते मैनू मौत दा कोई भय नहीं रह गया। मरत ना सोग बेयोगी, क्योंकि संसार जिहड़ा डरदा पिया। कबीर कहिंदे ने अपनी बाणी च

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया में ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड

श्री वाहेगुरु जी। सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, राम नाम मल लागा, जम लज्जाए कर पागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता। रहाओ नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी, अनद करे तेरे दासा, जब पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा, ताती वाउन अलग गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाई, सदगुर पूरा पेटिया, जिन बणत बनाई, राम नाम औखत दिया, एका लिवलाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई, प्रभ पय सहाई। सलोक जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुटे, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजवा, मन में चितवो चितवनी, उदम करो उठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए, करते का होय बिचारो, तित कर गावो सोहेला, सिवरियो सिरजन हारो, तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला। हों वारी जित सोहेले, सदा सुख होए रहाओ, नित ने जेड़े समालियन, देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देव सज्जन असी सड़िया, जो होवे साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय, नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वड़ाई तोए। रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा, थिति वारी माहो हुआ, सूरज को रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलान लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए, भाव खंडना तेरी आरती, अनता शबत वाजंत पेरी। रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोय को, सहस मूरत नन एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरन लोभित मनो, अंधनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बो परया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हरले मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुनवड्डा है, कर डंडौत पुनवड्डा है। रहाओ साकत हर रस साध न जानिया, तेन अंतर हम में कंडा है, ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पावे, जम काल सहे सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पाव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, भव सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़बड़ा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिनस रहना रे, मन गुरमिल काज सवारे। रहाओ ए संसार बिकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एह रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुत

राम की पेटर गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पूर्व लिखाए सवन दिन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुरु गोपाल सुख सहद्यानंद कनेर सत पावन साधु तुरा हर मिले नारायण नानका मनोरथ पूरा समल पंचम चंद कर थे माई क्यों कर सदगुरु प्रसाद स्वलोक जा को पाए कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगे तन राम से।

स्वभावे मोह हर प्रेत कर दे ए मंदि जय अच लाइय चित मुरारी मारण की जय सुन प्रजय दर्शन को बलिहारी गुरु सो पर सन मिल नाम चुन तन दिन दिशा सुने हा को नानक शांत अनंत ठाकुर के हर च्यों की जय ने मन आसन हो करे चकवी सुर सन हो चित वे आसकनी कल दिन देखिए कोकलियां परित चवे सुहाविया।

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
1: वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

उन संग मोहे उदारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ।

नाम की महिमा संत रसाय संत प्रताप दुर्त सब नसाय संत का संग बट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर न हो।

काल अष्टपदी रमैया के गुंचेत परानी गमन मूल ते गमन दृष्टानी जिंतु साज सवार सी गारिया गर्भ अगर मैं जने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भार जोबन भोजन सुख सूध बिरद भया उपर साग सैन मुख अपयाऊ बैठ कऊ दैन एह निर्गुन गुन पशु न बुझै बख्श लहाउ तो नानक सिजै दे प्रसाद धर पर सुख बसह सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस्त पाम करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोगमड अंध ब्यापे नान काढ़ लियो प्रभ्यापे आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करा।

जाए अष्टपदी दस वसूले पाछे पावे एक बस कान भी खोट गबावे एक भीना दे दस भी हिरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय साधन पसकारा जाके मन लागा ब्रह्म मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साप नी दे रास खात पीत भरते अर्ध उलास अपनी अमान कश बहर साले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीता भी खोवे और उसका विश्वास न होवे जिसकी वास्तव से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा वा नहमत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान अनेत बिरकी छाया सुरंग लाभे अबन से अमन पछतावे जो दिसै सो चालन हाल लपट रहो ते अंध अंधार

रसना निप्रसाद सुख सह जय बसना निप्रसाद हस्त कर चले निप्रसाद संपूर्ण फल निप्रसाद परम गत पावे निप्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग बरकत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो निप्रसाद

का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मानो प्रकाश जैसे धर भरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान। ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर भया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दुष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,

जो जो जपै तसकी गत होए सासंग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उतारै पस प्रेत मुगत पाथर को तारै सर्व रोका अवखत नाम कल्याण मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तोर कर।

आप कृपा करा तिस दास को सब सो जी पर सगल संगातम उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म तावै जीवन मुक्त सब कहावै ऐसा हरकत ऐसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग ऐसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मर तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानको पुरकिये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊं जित जित कर राख है।

राष्ट्रपति कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख ना करहे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरखन बजाए, कई कोट पवन पाणी बसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखेतर, कई कोट देव दानव इंद्र सेर शतर, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्शास्त्र, कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच, सबते नेरा सब हूं ते दूर, नानका प्रभ त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरहे, कई कोट बहु जुन्नी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, कई कोट जय जय भाणा तैत राखे,

अर वो जो मंत्र को थामे थमन थे गुर का शब्द मने या समन ज्योपा खान नाव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लागत न स्तरा जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए विकास जो महाउद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तुहूर दार की हर लोचा पूर मन मूर्ख काय बिरलाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तसे चितार जो कश करे सोई सुखमान भुला कहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहो रस रोबी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पात सेती कर जाहे।

लाद खेव संते संचाल वृद्याग विख्या जंजाल धन धन गय सब गोय मुख उजल हर दुर्गे सोये हे बापार बिरला बापार हे नानक था गय सदबलहार चरण साधु गये तो हे तो हे पियर साधु को अपना जियो साधु की तूर करो शनान साधु पर जाइये कुर्बान सा सेवा बट भागी पाइय सा संघर कीर्तन गाइय अनक बिगन दे साधु राके हर गुण गाय अमृत रचाख है ओट गही संते इंद्र आया सर्व सुख नानक दे पाया मृतक को जीवालन हार भुखे को देवत आधार सर्वधान जा की दृष्टि बाहे प्रभु लिखे का लहना पाहे सबके तिसका ओ करने जो तिस्मिन दूसर हुआ ना होग जब जन सदा सदा दिन रैणी सबते ऊंच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको

चाहे परपरे से रहे समाए, जो हो वाह हो वह सो जाने, परपरे का हुक्म शान है, तिसकी महिमा कौन बखाना हो, तुसका गुण के एक ना जाना हो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कौ नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तेन जन देहे, जिनजन अपना प्रभु बिछाता, सोजन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श पाप मिटावे, अवर सयान में सगली शाट, तिजन की तू सेवा लाग, आमन जानो भी तेरा, नानक तिजन के पूजो सद पैरा सरो, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नामो, तिसके संग से कुदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी।

जिसको होत प्राप स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मतले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जानना सो सतगुर।

भगवान के हिता अनुसार अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो कर्ण

होए मन बिगसे साध चरण धोए भगत जना कह मंदर रंग बिरला कऊ पावै संग एक बस तीजे कर वया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभक्षांद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल।

हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सर पुरख भगवान सर्वै कुंट मुक्त मोख पाए एक नम खरके गुण गाए अनक राज भोग बडियाई हरके नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हरनीत परिसो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहो निवास सर्वसू

फिर जाप अष्टपदी। जब अकारे काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन्न समात बैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिहन्न जापत भर्क सो कव किसे व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कहाँ किसोवत ब्रह्म, अपन खेला भ्रतीजा नान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुगत कहो किसको घनी, जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी जो तर तब कमन ने डर कमन का तर डर, अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एक का तब चित्रगुप्त किस पूछ।

पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामे पुरख प्रदान जिस मन बसे सोत निहार

जी की। आप साज धारी सब साज, ओत बोध आपन संग राज, ताकि गतमित कही ना जाए दूसरोता सो जी पाए। जिसका किया सब प्रमान गुरप्रसाद नानक हो जान, जो जाना है ते सदा सुख होए, आप मिलाए रहे प्रभु सोए। ओ तरमंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जन आवन का यह सुभाव, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करा।

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मान अंतर की उतराय चिंद आस अनित त्यागो तरंग संदना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंती कर हाओ सा संग अग्न सागर तरो हर तन के

सबरेन अमृत नाम सा संगलैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण ही सेव की सेव आल जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम संदरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निबी खेप हमारी। प्रभु की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निधान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान प्रगट सब लोए सब ते ऊज पाया स्थान बाहर न होवे आमन जान अर्थन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम साध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब गय मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्क बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन का मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं तागीगत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सीमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत गय मन विश्राम कोट परास सास संग मिटै संत कृपाते जमते छुटै जाके मस्त करम ब्र पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप।

निराकार ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल पवन की शुद्ध।

असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातारु

लाख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए त्राहे पद पवड़िया चढ़िए होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ थीस आखन

सुहादेव अनंगी नामे स्वभाव तीसरे अनंगी नामे स्वभाव तीसरूपे प्रपंगी प्रमाथे स्वभाति विभुक्ते कलंकं बिना नेक लंकी स्वरूपे नमो राज हृदयेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज हृदयेश्वरं परम वृद्धे नमो सहस्त्रपाने नमो वस्त्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर में नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे पुप

अंतरंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा भृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता।

ही बहु चित माध पार शांत व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसने अपांग उपमा अनांग अनुभव प्रकाश निहदिन अनास आजान बाहो साहान साहो राजान राज पान आन पान।

ने हरि फल आदि मैं जाय कर कीने अनेकल तुरंग है अभेद है भंग है आदि जल निवाज है गणि मुलख राज है निरुक्त स्वरूप है तेरे मुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है स्वजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समाह तो पराज है सदा सर्वसाज है

परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्पर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, पवभंजन है, अर्गंजन है,

नास आकाश अगांजे अपहंजे अलख अपाख अकाल दयाल अलेखे अपेखे अनाम अकाम अगाह अटाह नाथे प्रमाथे अजोनी बोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मं अपरमं अगंजे लेखे

नित्यत्व की इच्छा तब चरण अनुमान रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्ट सब तुम काब हुआ पुहाथ दे मोहे बिचाभ।

सच सबना का खसम है जिस बख्से सो जन पाव है कह नानक सच सोहिला सच्चै कर गाव है आनंद।

हिरंसर ओडरावा चाटे पाए वेखे लोखा से घर जाए रोटिया कानपुरे तालाब सारे धरती ना गावन गोपिया गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाव निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवक रंग चढ़ाओ पिनी रहे जिन्ना मन चाओ।

जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझ सचो सच वरताया जिस तू दे सिमरे सच तिनी सच कमाया।

0: त्रितन करे अच्छा तोए सच ता बर जानिए जे सच धरे पियाओ नौ सुन मरे सी तपाए मोक द्वार सच ता बर जानिए जा जुगत जाने जियो दर्द काया साध के उच्च दय करता पियो सच ता बर जानिए जे सिख सच्ची ले दया जाने जीव की किछ पुन दान करे
1: सच ता बर जानिए जे आत्म कीर्त करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कडित होए नानक बखाने बेनती तिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तलीखा
0: जे मिले तमस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलग

दुख दारू सुख रूप भया जा सुकाम न होई, तू करता करना मैं ना ही जा हूं करी न होई, बोले हारी कुदर तपस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा। जात में जो जोत में जाता कलकला पर पूर रहा, तू सच्चा साहेब शिव सवाल जिन

कि भाई आ पृथ्वी जिन्नी भी टप रही है ये माया दे बल करके टप रही है। टपण दा नचण दा शब्द गया ना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना, नचना और टपना एक ही गल होंदी है। वास्तव च छंदाबंदी दा जेड़ा नियम है वह पूरा करन लई नचना शब्द किया होया, नहीं आरती का टपना ही बनता। आखो सतनाम श्री वाहे। कहंदे लोग माया करके टपते फिरदे, किसी को माया बहुत है पैसा बहुत है उहदे करके टपदा फिरदा, किसी को तंदुरुस्ती बहुत है किसी को जमीन जायदाद बहुत है, सब को बहुत बहुत है तो फिर एक दूजे च बजते फिरते टपते फिरते महाराज जी कहते माया करके माया दे टपाए हुए टपते फिरते महाराज। फिर यह माया दे प्रभाव तो ये टप्पण तो किवें बचा जाए आप जी भी कृपा करके दस दो। फिर महाराज जी उत्थे वचन करते हैं कि भाई पहल पुरसा बिरा

भ्रम आए तुम चे द्वारा, बहुत जन्म बिछरे थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे, बड़े जन्मां दे बिछड़े हुए हैं। महाराज नामदेव जी कहते महाराज भटक भटक के

करते रह। साचा नाम मेरा उधार, साच नाम उधार मेरा, जन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मनाए वस्याज, निच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान किता गुरु विटो, जिस दिया वडियाईया, कहे नानक सुनो संतो सब तरह प्यारो, साचा नाम मेरा उधार, वाजे पंच

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आय जिस जिथे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दयावे ताहे सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान तरके बोलना जी वाह। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता। तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए। खुपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए। गुरुद्वारिया की सेवा ने कुरबानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी सिद्ध के सुवासा सांग निभाया। तिना समूह शहीदा की कमाई का ध्यान तरके बोलना जी वाहिगुरु। पंजा तहत सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पत दे राखे आप। अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पहंदे सदा सहाई दितार जियो। श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारी खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान। नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर दास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है। जो सच्चे पातशाह दियां प्यारियां संगतां वलों पिंड बिरगा ते समूह संगतां वलों सच्चे पातशाह जी हर साल की तरह पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी आप जी दे विआह पुरब की खुशी वे सच्चे पातशाह जी सलाना समागम हुंदे हन। कल तो समूह संगतां वलों परिवारां वलों आप दा शुकराना करदिआं होइआं तुरकी बाणी दे सत श्री खंडपा साहिब दी रमता होई। ऐस वेले आत्मातिक गुरबाणी दा जाप होया है। कृपा करनी पातशाह जी बाणी पढ़दिआं आपदी गुरबाणी सरवण करदिआं भुल चुक दी खिमा बख्शना। इसे तरह संपूर्णतावां करा लैणीआं सच्चे पातशाह। सब परिवारां विच सुख शांति किरत कमाईआं विच वाधे पौणे तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां सच्चे पातशाह जी। ओ छे पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास। बख्शा खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है। करी पाक साल सोज पवित्रा हुण लाभ भोग हर राय। आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। चलते चलदे परिवार चो श्री मुख वाग दी बख्श करो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कुल सबाया सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूर्ण नारायण गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण भौजल बिखमस गाह गुर बोए थे तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर

काट तिलक दुख माया करली ने आप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे श्लोक दृष्टांत एको सुनियांत एको वर्तांत एको नर हरा नाम दान जचंत नानक दयाल पुरख कृपा कर हिक सेवी हिक संभला हर एक सपय अरदास ना वखर तन संचया

ऊच समाना ऊच समाना ठाकर तेरो अवर न काहू ताने ऐसो अमर मिल्यो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग शोक दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन माने टोडी मोहल्ला पांजवा हर बिसरत सदा खवारी ताको तोखा कहा ब्यापै जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नवखंडन को राज कमावै अंत चले गोहा।

अवर कछु मेरे संग ना चल, मिले कृपा गुण गाम रहाओ, राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम, ताए ताए बो बेद को धावे सगल निरार्थ काम, बिन गोबिंद अवर।

तर सचे नाम की हर नाम रहा लिवलाई गुर ज्ञान पदार्थ नाम हर नाम उदय दृढ़ाए प्राप्त सोलह गुरु चरणी लाग आए अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आख आए तेवा मन अपना निम्न लागा पाए सज्जन मेरा तू करता पुरुष सुजान सगुरु मित मिलाया मैं सदा सदा

मेरा सदा सदा न आवे न जाए। ओ अविनाशि पुरुषे स्वमेरा सुमाय राम नाम तन संचया सावर पुंजे रास नाने दुर्गा मन्या गुरुपुरे सवास राग सोहि अस्पर्या महला पंजमा कर पहला एक ओंकार सगुरु प्रसाद उर्ज रहे विखिया कै संगा मन व्यापतनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कल्पाय पूर्ण परमेश्वर रहाओ मोह मगन मेरे व्याप तृष्णा कबो नहीं त्राप बस क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान सूर्य महागुबार परमत व्यापत जर किवारा जन पय प्राप्त रुबारा सन्ध सबंध पुराना मैल न पावे फिर तेगाना सगल ब्याड कै बस कर दीना फिर त्यास ज्यो जल बिन मीना कछु सियान भुखद न मोरी एक आस ठाकर प्रभु छोरी करो बेनती संतन पासे मेल्यो नानक अरदास प्यो कृपा सत्संग पाया नानक द्रवते पूरा पाया राव दूजा राग सुहि महला पंजमा कर तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मिथन मोह अगन सो सागर कर कृपा उदर हर नागर चरण कमल शरणाय नारायण दीना नाथ भगत परायण रहा नाथ नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत न भेटन

पंच बटवारे मन बद करम प्रवेकत आय सर्व फल सोई धन पाए तार अनुग्रह अपना प्रभु की न केवल नाम भगत रस दिनाद मदन प्रभु सोई नाने दिव न कोई राज सोई मल्ला पंचमा पदिया करणो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जिन डिठिया मन रसी है क्यों पाई तन संग दियो संत सदन मन मित्र से लायन प्रभु से रंग दियो तिन सो प्रीत न तुटा ही कब न हो भंग दियो पर ब्रह्म प्रभु कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आय मिलो तन सजना नाम जपो मन मित जियो राहु देख्या सुनै न जानै माया मोहै अंध दियो काची दे बिन सुनी कूड़ कमावे तंद दियो नाम त्यावे से जिन चले गुरपुरे संबंध दियो हुक्मे जाओ जुग में आया चलना कम हुक्म संजो दियो हुक्मे प्रपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग दियो जिसनो करता विसरे तिसे विछोड़ा सोग दियो आपने प्रभाणिया अंदर के पेंदा जाय दियो एथे सुख मुख जलाय को नाम त्याय दियो आदर दत्ता पार ब्रह्म गुरु से ब्या सत पाय दियो तान तनंत्र रब रिया सर्व दिया प्रत्यय पाल दियो सचख दाना संचया एक नाम तन माल दियो मन ते कमना विसरे जाय आपे होए दयाल दियो आमण जाना रह गए मन उठा निरंकार दियो ता कांत न पाइए उचागमा पार दियो दे प्रभु अपना विसरे सो मरदम में लख वार दियो साथ ने उतन प्रीतमा जिन मन उठा आप दियो गुण सांझी तिन संग बसे आठ पैर प्रभु जाप दियो रंग रते परमेश्वर है बिन सकल संताप दियो तू करता तू करण हार तू एक अनेक दियो तू समरथ तू सर्व मैं तू है बुद्ध भविक दियो नानक नाम जपा जा नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक दियो राजसोई महला पंचमा पदियां कर दसवां काफी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जे भुली जे चुकी साई पी तहन जी कांडिया जिन्ना ने उदू जाने लगा चूर मरो से वांडिया हो ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा ए मन जाया सुरा रहो सज्जन तू है सैन तू मैं तुझ प्रभाव माणिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा बेकाल या पाई मोह दासड़ी न तेर दय रखा संभाल पाव जुलाई पंध तो नैनी दर्थ देखाल सरवणी सुनी कहाड़िया जे गुरथी वे कृपाल किते लख करोड़ प्रिय रोमन पूजन तेरिया तू साही हो साहो हो कह न सका गुण तेरिया सैया तो असंक मंजे हब मंदाणिया एक बोरी नदर निहाल दे दर्श रंग माणिया जे डिठ मन धीरी है किलवख वंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहा प्रपुरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पुर लिखिया पाया नान संसुआए सुई महला पंजमा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होथिया नाम निधान अपार भक्ता मन सह जन्म मन बोध दुख साधु संग न सह रहा मोह बाद अंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल ना वे चुनिया मेरी मेरी धार बंधन बंधिया नरक सुरग अवतार माया धंधिया सो दत्त सो दत्त सो तत्त विचारिया।

తిని జని జాపలయ్యా కోజా కోటయ శంఖ భౌతి అనంతకే జస్వదాయడా విసరణాయ దారి అప్నా నామ దేహో గుణగామా దిన రాత నానక చావు ఏహో राग सुई महला पहला कुछ जियक अंकार सदगुरु प्रसाद मांज कुछ जिया मामन डोछड़े हो क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दो एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्हें सखी सौ राव्या से अम्बे छाबड़ी है जियो से गुण मांजना आवने हो क्या जी दोस तारे हो जियो क्या गुण तेरे बिथरा हो क्या क्या कहने तेरा नाव जियो एक तो टोल ना अम्बड़ा हो साध करो बाणे तेरे चाओ जाओ जियो सोना रूपा रंगला मोती तैमान का जियो से वस्तु से दितिया मैं तीन सो लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड पत्थर गिते राजियो हो एने टोली पुली असर तिस कंतना बैठी पा जियो अंबर कुंजा कुलिया बग बैठे आए जियो स्वातन चली सौरे क्या मैं दसी अगे जाए जियो सुती सुती चालती भूली वाटड़िया जियो तैस नालो मुद्दिया स दुखा कुतरिया जियो तो दुगुण मैं सब अवगुणा एक नानक अरदास जियो सब राति सुहागण ही मैं दुहागण काई रात जियो सोई महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साए मेरी राह जियो तुझे अंतर हो सुख वसा तू अंतर साबा जियो पाने तख्त वडाईया पाने पीख दा दियो पाने थल सिर सर वह कमल फुलिया का दियो पाने पवजल लंगे मां पाने मांज परिया जियो पाने सो सो रंगला सुत्रता गुण था जियो पाने सो पिया बला हो आमण जानविया जियो तुम सो अगमा तोलवा हो क्या क्या टह पिया जियो क्या मांगो क्या क्या सुनी मैं दर्शन भूख पिया दियो गुर सब दिसो पाया सज नानी की अरदास दियो सोई महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुर सिखड़ा तस निवने लागो पाई दियो आखा बिरचा जी के गुर सज्जन दे मिलाई दियो सोई दासो बदेसरा मेरा मन अंत न काहु जाए दियो ए मन तैकूं देव सामे मार्ग दे बताई दियो हूँ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरण आए दियो मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए दियो तुम्हारी चले पाड़े गुरु कह सो कर कमाए दियो त्याग्या मन की मतड़ी विचार है दूजा पाओ दियो यो पावे अरदर साबड़ा न लगे तती वाओ जियो आप बोलना जानदा मैं क्या सब कुमाओ जियो आहर का भगत का जाना भगतिया गुरु नानक किया बसाओ जियो मैं बहुड़ ना तृष्णा भुखड़ी हो रजा तृप्ता गाय जियो जो गुरु दिस सिखड़ा ते निव निव लागो पाए जियो राग सूही छंद महला पहला कर पहला एक अंकार सतगुरु प्रसाद पर जो बन मैं मत पेड़े कर पाहुनी बलराम जियो मैले अवगुण चेत बिन गुण गुण ना समानी बलराम जियो गुण सार ना जाने परम पुलाणी जो बन बाद गवाया वार कर दर दर्शन नहीं जाता फिर कैसे न पाया सतगुरु पूछना मार्ग चाली सुती रैन बिहानी नानक बाल तन रंडे पा बिन फिर तन को मलाणी बाबा मैं वर दे मैं हर पर पाव तिसकी बलराम जियो राब रिया जो चार त्रिपुण बाणी जस की बलराम जियो त्रिपुण कंतर वसुआगण अवगण वंती दूरे जैसी आसा तैसी मन सा पुर रिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैल वैसे नानक मैं बार साचा पावे जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन कनाए हो पिमना साहु रे बलराम जियो साहा हुकम रजाए सो ना टले जो प्रभु करे बलराम जियो किरत पया करते कर पया मेट न सके कोई जान जी ना हो नर ने केवल राव रे आते लोई माए नरासी रोए बचनी बाली बाला हेते नानक साच शब्द सुख महले गुरु चरणी प्रभ चेते बाबल जित्री दू नया घर पे बलराम जियो
रसी वेख दूर पर रावे कर सोहिये बलराम जी साचे पर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मतपुरी प्रदान संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुरु ज्ञान सत संतोख सदा सच पले सच बोले फिर पाए नानक वचन ना दुख पाए गुरमति अंकार समाये राग सोई महला पहला छंद कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हम कर साजन आए सच मिल मिलाए सहज मिलाए हरमन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त हो सहते मन लाया अंदर मेल पया मन मानिया करमंदर सो आए पंच सब तुनिया नरवाजे हम कर साजन आए आवो मित प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभाव सोरड़ा जो चारे अपने कर आया तन सुहाया कार शब्द सुवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया मंत्र अमृत पिना अंतर प्रेम रतन ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारो जंत बेगतो सपले हो दाता सिर सिर देवनार तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण के ना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पिना आत्म राम संसारा काचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगवा पारा तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कवन कहाए काल बेकाल पै दिवाने मन राखे गुरु ठाए नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संयम प्रपाए राग सोई महला पहला करती जाए क्यों कर सतगुरु प्रसाद आव सजना हो देखा दर्शन तेरा राम कर अपने खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रा मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पाई ने केवल जन्म मन दुख नासा सगले जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुपाए नानी साजन को बल जाइए साथ मिले कर आए कर आड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जहाँ रावी रंगराते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाते तस्कर मार वसी पंजान अदर करे बेचारे नानक राम नाम निसारा गुरमत मिला है प्यारे वर पायड़ा बालड़िया समनसा पूरी राम फिर राव आड़े शब्द रली राव रिया ने दूरी राम प्रभ दूर न होई घट घट सोई तिनार सबाई आपे रसिया पे रावे ज्यो तिसकी तिस दी वड्याई आमरा डोला मोरा पारा गुरपूरे सच पाइये नानक आपे जोग सजोगी नद करे लिवलाइए फिर उचड़िए मारड़िए तहे लोआसर ताजा राम विषम पे देख गुणा नद सब जगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निसाड़ ना बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवान पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे न जासी नानक गुरमुखा पछाने प्रभ जैसे अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सोई संत महला पहला कर चौथा जिन किया तन देखिया जगत अंदड़ै लाया दान तेरा कर चानना तन चंद दीपाया चंदो दीपाया दान हर के दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सोए पर कमोनिया लिया विवाह हुआ सोब सती पंच शब्दी आया जन किया तन देखा जगत अंदरे लाया हों बल हारी साजना मिता वरिता ए तन जन चौगाडिया मन लीड़ा दिता लिया

बलिहारि साधना मिता वृता गुण कहो वे वासल करवासलय जय गुण मन साधना मन शांत करी जय शांत करी जय गुण करी छोड़े अवगुण चलिए पैरे पिडम्बर कार डम्बर अपना पेड़ मलिए जित जाए भैया फल कहिए चोल मृत भी जय गुण कहो वे वासला करुआ।

देव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सह पावो कल कलेस तन माहे मिटावो सिमरो जास बसुंबर एक नाम जापत अगणत अनेक वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जस जी बसावै ताकि मेहमा गनी न आवै कांखिए कै दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुख मुनि सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन बिसराम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिन से दूजा प्रभ कै सिमरन तृष्ण तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दर गह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमरे जन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उधर मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से धनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बे मोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्ब के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अबनासी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरे से पर उपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलहारी प्रभ को सिमरे से मुख सहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन अंध कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते आंदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जन को प्रभ मैया नानक तैन जन सरणी पिया हर सिमरन कर कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन पै सैद जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बजाया नानक गुरमुख हर सिमरन।

नानको पुरख कहिए जीवन मोगत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखे ते सतन नाओ आपे करन करामन जोग प्राव भावे सोई फुन होग पसरी आप होए अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता अबनास सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल सलोक औतद करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट चार ब्योहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भर में उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार कई कोट कब काव्य विचार कई कोट नवतन नाम त्याव नानक करते का अंत ना पाव कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट पै गातम निकोर कई कोट पर दर्ब को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया शरमाहे कई कोट पर देश परमाहे जित जित लावो तै तद लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार कई कोट राजस्तम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर सात कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जखे किनर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिरगाच सब ते नेर सब ते दूर नानक आप अलपत रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोझो नहीं फिरे कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट

प्रभ कै हाथे कही कोड पै बैरागी राम नाम संग तेन लिव लागी कही कोड प्रभ को खुजंते आत्म पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तेन को मिलियो प्रभ अबनास कई कोट मांगे सात संग पार ब्रह्म तेन लागा रंग जिनको हो आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी यार खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड।

न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोड नाम रस पीव अमर पै सद सद ही जीव कई कोड नाम गुण गाव आत्म रस सुख सहज समाव अपने जन को सा समारे नानक कोई परमेश्वर।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सवान जो जन मैं जोबनवंत सो होवत बेष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन मरे बोजोन परमावे तन भूमका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकी हा मुकत आगे सुख पावे तनवंता हुए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे बोलस कर मन खूपर करे आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दर गए परवान कोड कर्म करे हो धारे शर्म पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फेर फेरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्ब की रेन जा का मन होए कोह नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जाबे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बेरी मीत तब लग नेचर नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख कोठ तावे त्रिपत न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नै त्रिपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्ब सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा नानक।

इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। जो किश किनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हु कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाहे, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेसे समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप किनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार। ओते पैन कहो किश होए, थान थनांतर एक है सोए। अपने चलते आप करने हार, कोत करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सात सात सात प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुने सरवन बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै।

जस हो वै सो परसान अष्टपदी अविनाशी पर मन मैं राख मन की तू प्रीत त्याग तेहते पर नाही किश कोए सर्ब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बकसंद सा तेरे की चरणे पाओ नानक कह मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन पन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद्रु मंगल सद जाक सर्ब थोक सुनिए घर ताक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रहत मैं भोगी त्याय तय भगते सुख पाया नानक तिस पुरख कहा किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत समात ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे तह गुण में जाको फरमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊंच नीत के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान

बोलो जस जेहबा दिन रात प्रभ अपने जन की निदात करे भगत आत्म कह चाए प्रभ अपने सो रह समाए जो होवा होवत सो जन है प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ प्रभ पर बसे हजूरे आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओटले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर सियान बसगली छाड़।

सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सह की करे प्रतपाल शिव को गुर सदा दयाल सह की गुर दुरमत मल हिर गुर बचनी हर नाम उचर सतगुर सह के बंधन काट गुर का सिख बिकार ते हट सतगुर सह को नाम तन दे गुर का सिख वड भागी हे सतगुर सिखा हालत पालत सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को।

तिसको होत परापत स्वामी अपनी कृपा जसे आप करे नानक सो सिव गुर की मतले बीस बिसवे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सत गुर जस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्वनदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन्म पार ब्रह्म एक आप नहीं कश भरम सहस स्यान भलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेखत पनीत पारसत चरण गत निर्मल रीत पीड़त संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गे गवे सुनकर भजन करन अघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृढ़ पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तसलये मिलाए जे बाए कोतत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हृदय सिमरे सद बलहारी सत गोरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुर का नाही कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पैर

अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तै ते नासे, तवत माहे ठाड वरताई, अनंद पिया दुख नाठे पहाई, जन्म मरण के मिटिया देसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे, जिसका साधन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भरम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आव सर गुण पी ओही, कला तार जन सगले मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, ओत पोत लव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलहारी। श्लोका

अष्टपदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतर चिंद आस नित त्यागो त्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग यगन सागर तरो हर तन के पर लिहो पंडहार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक नवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो त उधार आप तरे लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पै सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पै गुरदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कै

सुखमन सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान, सर्ब इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बोहन होवे आवन जान, हर तन खाड़ चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम सांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल परगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पुने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, इहु निधान जपे मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत सातर बेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिसराम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत किरपा ते जम ते छुटै, जाके मस्त कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तेह जन आवे हर प्रभ चीत, जन मरण ता का दुख निवारै, दुलाभ दे तत्काल उधारै, निर्मल सोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल

0: दुष्ट का संग
1: मनते बिनसे सगला परम
0: कान पूछे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे।

0: केवलतनि
1: तमन्द मुक्त को किसको गनि
0: रवे कैरगम पार
1: तमन्द स्वर्ग को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए
1: शिव शक्त कहो कित ठाए
0: जब आप अपनी जोत तरह
1: कमल डर कमल का डरे

ना जाननी जासन जन्म सब हार बिन हर भगती सिंगार करे नित जमे हुए खुआर संसारे विच सोभ ना पाए नी अगे ज

अंदर गढ़ कोट है सब दे संतर दिसाया पे ताड़ी लाइन समय परवेसा आपे श्रेष्ठ साजियन आप गुप्त रखे सा गुरसेवा ते जानिया सच प्रगटिए सा सब किछ सचो सच है।